0: Sonic, seamless, browsing with streaming connectivity, dash home internet,
1: अब अभी नाम चाहिए कि प्रधानमंत्री बनने बाद कभी नहीं चलेगा।

पोखरी बैग फ्लैशबैग तथा सेल्स आउट गिफ्ट्स वाशिंग मशीन में छोटे से रेडियो मैजिक डिशवाशर में वाशिंग टैबलेट एयर कंडीशनर में इंस्टॉलेशन फ्री स्टैंडिंग ओवन में प्रेशर कुकर नागरिकता मात्र भर पुग्छ सहज ईएमआई में खरीद कर सकता।

5000 पोखरी में कैशबैक तथा सेल्स और गिफ्ट्स वॉशिंग मशीन में 6 केजी एनुअल मैजिक डिशवॉशर में वॉशिंग टैबलेट एयर कंडीशनर में इंस्टॉलेशन और फ्री स्टैंडिंग ओवन और प्रेशर कुकर अधिकतम मात्र भाई पुग्छ सहज ईएमआई में खरीद कर सकता।

0: 추천아 성기조 문호랜전 구아투 사해노 요호 라디오 사해노 나나비 나나비 토플로 아트 아트 메가허즈
1: साहिनो समय सूचक अहिले दिउँसो को एक बज्यो वन पीएम माया देवी कन्या कलेज को कक्षा 11 में भर्ना संबंधी सूचना विभिन्न विधा में पर्याप्त छात्रवृत्ति प्रदान करने इस क्षेत्र के उत्कृष्ट कलेज माया देवी कन्या कलेज में शैक्षिक सत्र 2083-84 का लगी कक्षा 11 में व्यवस्थापन शिक्षा शास्त्र और मानविकी संकाय अंतर्गत अंग्रेजी और नेपाली दुवै माध्यम में विमानी सत्र का लगी प्रारंभ वितरण भइरहेको जानकारी कराई प्रिंसिपल माया देवी कन्या कलेज भरतपुर 10 चितवन संपर्क नंबर 056-493-495 योग गरौ रहौ निरोग पतञ्जलि योगपीठ नेपाल महिला पतञ्जलि योग समिति नेपाल पतञ्जलि योग समिति नेपाल युवा समिति नेपाल र पतञ्जलि योग समिति चितवनको सहकार्यमा आयोजित वृहत निशुल्क योग शिविरमा सहभागी भई स्वस्थ रहौ

तीस बजे सम्म समन्वयन महिला पतञ्जलि योग समिति चितवन महानगर योग समिति महिला महानगर योग समिति चितवन आयोजक भरतपुर महानगरपालिका 18 नम्बर वडा कार्यालय।

36 बजे सम्म समन्वयन महिला पतञ्जलि योग समिति चितवन महानगर योग समिति महिला महानगर योग समिति चितवन आयोजक भरतपुर महानगरपालिका 18 नम्बर वडा कार्यालय।

0: बावलट्ठा।
1: कौन?
0: पता नहीं, दारू पी के गाड़ी चला रहा था। मरते मरते बची हूँ मैं।
1: फालतू है साला, मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको। चल छोड़, मैनेजर देख रहा है। चल चल चल चल चल।

2020 को अवसर में सैमसंग का होम अप्लायंस को खरीद में आकर्षक उपहार तथा कैश बैक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल सेमी ऑटोमेटिक में 1 केजी एरियल एयर कंडीशनर में इंस्टॉलेशन साथ ही इंस्टेंट कैश बैक बनी बम्पर में हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल नागरिकता मात्र भैपुग सहज ईएमआई मार्फत खरीद कर सकता।

सूचना संगीत मनोरंजन को अटूट साहिनी यो हो रेडियो साहिनी 99.8 मेगाहर्ट्ज़।

0: के जाइना
1: का बात करतु तू ई तो दसैं हो नचना गैना रमैना हो अपन कला संस्कृति बजैना हमरे उधर के जाप कले से हमार भैया बाबू के कासे है हमरे एक अर्क हिमाय करते मजा ले भोज करके जापना उधर न काजे अब चाइना।